ठीक है रे। सत्संग जी लंगर तैयार है गया, कृपा करो थले लंगर हॉल जुड़ो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

दोष दोख ते लेहो बचाए, कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता, किलबिक सकल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तु जप पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मान बांछत फल

दुख दर्द पौ निकट न तिर नर के रहै, हो जो या कि एक बार चौपाई को कहै। चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजै, अर्ध सहस फुन तीन कहिजै। भाद्रव सुधि अष्टमी रवारा, तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा। स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे, हम एक न जान्यो।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तम पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आइया शब्दोता गाव हो हरि केरा मन जनी वसाया कहै नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कहै नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले

तन हमार मीत रहाओ, मन बिलास पै साहिब के, अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभु पूरन पैज रखाए। मन बिलास पै साहिब के, अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक,

मिलत महारथ प्रेम भगत निज तारी उरी। गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारी, चलत रचो जगदीश काम स्वाय गज बस परे मन बौरारी। अंक सयुशीश भेखै बाज हर राच समझ मन बौरारे, निरपय हुई न हर पजे मन बौरारे। गहु न राम जहाज रहो मरकट मुठी अनाज की मन बौरारे, लीनी हाथ पसार छूटन को संसा पर्या मन बौरारे। नाचो कर कर बार ज्यो नल नी छूटा गयो मन बौरारे, माया एहो ब्योहार। जैसा रंग कुसंभ का मन बौरारे, त्यों पसरे उपासार। नावण को तीर्थ कने मन बौरारे, पूजन को वो देव। कौ कबीर छूटन नहीं मन बौरारे, छूटन हर की सेव। गौड़ी आगन न दै पवन निमग्न तस कर नेर, नाया वै राम नाम तान कर संचौनी। सुतान कति न जावे हमरा तन माधो, गोबिंद तरनी तारे सार। तन कहिए जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा, सो सुख राज न लइए रहाउ। इस तन कारण सिंह सनकाद खुद पे उदासी, मन मकंद जे बा नारायण पर ना जाम की फसी। निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी, ता सुमंत मन लागा। जल ते अंब थंब मन तावत, परम बंधन पऊ पागा। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी। तुम कर ला कोट अफसती, हम करे कुमरारी। गौड़ी ज्यों कप के कर मुठ चनन की, लोभ ना त्याग दयो। जो जो कर्म किए लालच लालच स्यों ते फिर गरे परेऊ। भगत बिन बिरथे जन्म गयो, सा संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहे रहाऊ। ज्यों ध्यान को सुमपुर फुलत, किन न कराए ले। जैसे बरमंद ने एक जोन मैं फिर काल हयू। या धन जो बनया सोदारा, पेखन को जो दे तेरी मैं अटक जोर। जा इंद्री प्रेर लियो आओदे नल तन, तेन को मंदिर चौंदे ठाठे। हो कह कबीर पैसा गर तरन को, मैं सतगुरु उठ ले। गौड़ी पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। मैं नाही का शाहे ना मोरा, तन तन सब रस गोबिंद तोरा रहाऊ। इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किनू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर कनी मैं सारी खिन, मैं बिन सजाए अहंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े रहो। जात पावे ता हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लंघावै। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चू गई फरावन जानी। कहो कबीर पाए सारंग पानी, और वार पार साबे को दानी। गौड़ी नौमी जोन छाड़ जो जग मैं आयो, लागत पवन खसम बिथरायो। जीरा हर के गुणा गाओ रहाओ, गर्भ जोन मैं उर्ध तप करता। तो जठरगन मैं रहता, लख चरासी जोन भरम आयो। अब के छुटके ठौर न ठायो। कहो कबीर भज सारंग पाणी, आवत दी सहजात न जानी। गौड़ी पूर्वी सुरग बासना बाछी।

सच तीर्थ सच स्नान हर भोजन पाओ सच सदा सच पाखंस सो है सच पायो गुरु शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वर्त सच कवजन कल

0: चक्कर बक्कर फिरे चक्कर चक मानिया पुरतीन
1: लोग चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप
0: आप देवनाथ मुरो था प्यो सबे जय थाप
1: परम रूप नीत मुरत पूरन पुरख पार
0: सर्व विचो रचो संजन कर्ण पंजन हार
1: काल हीन कला संयुक्त काल पुरख देश
0: धर्म ता सो परम रह तो पूत लख पेश
1: अंग राग न रंग जा कह जात पात ना नाम
0: गर्व कन्या दुष्ट पंजन मुख दाय काम
1: आप रूप मीक अनुस्तत एक पुरख तूत
0: गर्व कन्या सर्व पंजन आप रूप सूत
1: अंगहीन पंगनातम एक पुरख पार
0: सर्व लाय सर्व काज

0: केसर पत्र दाने
1: केसर पत्र गौने केसर पत्र पौने
0: केसर पत्र देश है केसर पत्र पेश
1: केसर पत्र राजे केसर पत्र साजे
0: केसर पत्र दीन है केसर पत्र लीन है
1: केसर पत्र जाओ केसर पत्र पाओ
0: केसर पत्र देश है केसर पत्र पेश
1: केसर पत्र काले केसर पत्र पाले
0: केसर पत्र हंता केसर पत्र गंता
1: केसर पत्र पेखी केसर पत्र पेखी
0: केसर पत्र काजा केसर पत्र राजा
1: केसर पत्र सोख केसर पत्र कोख
0: केसर पत्र त्राण है केसर पत्र प्राण
1: केसर पत्र देश है केसर पत्र पेश
0: केसर पत्र माने सदैव अंग प्रदान
1: केसर पत्र जापिए केसर पत्र थापिए
0: केसर पत्र पान है केसर पत्र मान
1: केसर पत्र इंद्र केसर

0: सतगुर प्रसाद पाच चैतस्मी त्वया प्रसाद स्वये श्रावक सुत्सम उस दान के देख प्रयोग कर जोग जिति के
1: छोर छोरा दन सुध सुधा दे सन सुनु अनेक मति के
0: सारे ही दिस को देख रहे हो मत कहू न दिखत प्राण पति के
1: श्री भगवान की पाए कृपा ते एक रति बिन एक रति के
0: माते मतंग जर जर संग नूप तंग श्रंग सवारे
1: को तुरंग तुरंग से कूदल पौन के गौण को जात निवारे
0: पारी पजा के पूपली बिन्यावत शीस न जात बिचारे
1: एते पे तो कहा पे पूपत अंत को ना गई पाए पधारे
0: जीत फिरे सब देश दिशान को बाजे तोल मृदंग निगारे
1: गुंजत गोड़ गजान के सुंदर ही सती है राज हजारे
0: भूत पुएक पुआन के पूपत कौन ग्रहणी जात पिचारे
1: श्री भगवान पजे बिने अंत को अंत के ताम सिदारे
0: तीर्थ नान दया दुमदान सुसंजम नेम अनेक बिसेख है
1: वेद पुराण कते कुरान जमीन जबान सबान के पेख है
0: कौन आहार जति जतार सबे सुब चार हजार की देख है
1: श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक ना लेख है
0: सिपा दुरंद दुबा सुसात सुना दो जान दलाएंगे
1: पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे
0: और अरीन मरोर मुआसन माति मतंगन मान मिलाएंगे
1: श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे
0: वीर पार पटे परे आर बिचारे सार की तार पिचैया
1: तोर देश मलिंद मुआसन माते गजान के मान मलैया
0: गाड़े गड़ान को तोड़न हर सुबातन ही चक चाल लवैया
1: साथ श्री सबको सिनायक चाचक लेख सो एक दवैया
0: दानव देव निन्द साचर पूत पुएक पुआन जपेंगे
1: जी जिते जल में थल में पही पल में सब था थपेंगे
0: उन प्रतापन बाट जय तुन पापन के पो पुंज खपेंगे
1: सात समूह पर सन फिरे चक सतर सबे हम लोग चपेंगे
0: मानव इंद्र गजिंद्र नरातव जोंत्र लोक को राज कराएंगे
1: कोट नानक जात दान अनेक स्वयं पर साथ भरेंगे
0: हमें सर बिसन सची पत अंत फसेजम फास पराएंगे
1: जय श्री पत के प्रस है पग ते नखलर पेतर तरेंगे
0: काप्यो जो दो लोचन मुंद के बैठ रहे हो भक्तियां लगायो
1: नाथ प्रियो ये सात समुद्र लोग के ऊपर लोग गवायो
0: बास की उपख्यान से बैठ के ऐसी ऐसी सो बैस बतायो
1: साच को सुन लियो सबे चिन प्रेम कियो तिहि प्रपायो
0: काहू लै पाहन पूछ तरियो सिर काहू लै लिंगरे लटकायो
1: काहू लिख्यो राची दिशा में काहू पिछा को सीस

0: जिनके मन बसिया वाजे शब्द गनेरे
1: है नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे
0: साचा नाम मेरा आधारो
1: साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया
0: कर साथ सुखमन आए बसिया जिन इच्छा सब पुजाइया
1: सदा कुर्बान कीता गुरवितो जिस ते बढ़िया
0: कहे नानक सुनो संतो सबत रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो
1: वाजे पंच बतित कर सबागे शब्द वाजे कला जित करतारिया
0: पंच दूत दुवस कीते काल कंटक मारिया
1: दुर्कर्म पाया तू जिनको से नाम हर के लागे
0: कहे नानक ते सुख हुआ तित कर आनंद वाजे
1: साची लवे बिंदे निमानी दे निमानी लवे बाजो क्या करे वे चारिया
0: तुद बाय समर्थ कोए नाही कृपा कर बनवारिया
1: एस नो होर था उनाए सबत लाग सवारिया
0: कहे नानक लिवे बाजो क्या करे बेचारिया
1: आनंद आनंद सबको के आनंद गुरु ते जानिया
0: जाने आनंद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया
1: कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया
0: जिनका मोह टूटा तिनका सबत सचे सवारिया
1: कहे नानक ए आनंद है आनंद गुरु ते जानिया
0: बाबा जिस तू दे सोई जन पावे
1: पावे ता सो जन दे जिसनो होर क्या करे बेचारिया
0: एक परम पुले फिरे दैद सिख नाम लाग सवारिया
1: गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिना पाना पावे
0: कहे नानक जिस दे प्यारे

तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरे, कोई न जाने तुमरा अंत उचेते। सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुमते, तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार, श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नाउ सिमरो श्री हर राय। श्री हर

रतन गहक गुर साधु देखियो तब रतन बकानो लखा मेरा मान गोबत हीर हर राखा दीन दयालु मदायु गुर साधु गुर मिलिया हीर पराखा रहा मान मक कोठी अज्ञान अंधेरा तिन कर रतन लाखा ते उजड़ भरम होए गावारी माया भयंग बिख चाखा हर हर साध मेलो जननी कै हर साधु शरण हम राखा हर अंगीकार करो प्रस्वामी हम परे भाग तुम पाखा जे हवा क्या गुण आख बखाण है तुम बड अगम बड पुरखा जन नानक हर कृपा तारी पाखाण डुबत हर राखा जैत श्री महला चौथा हम बारग कसु न जान है गातमित तेरे मूर्ख मुगद अना हर कृपा धार दीजा मत उत्तम कर लीजा मुगद असयाना मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर आन मलायो गुर साधु मिल साधु कपट खलाना रहाओ गुर खिन खिन प्रीत लगाओ मेरे हियरा मेरे प्रीतम नाम पराना

रखो और तारी हर हर अमृत बचन सुनाबहु गुर मिलया प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो पराना मेरा मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मिलहु पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुख दाता हर का रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मिलहु गुरु नानक नाम सुख होई राम। जैत श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा गुरमुख नाम सदा लैलाहा। हर हर हर हर भगत दृढ़ाबहु हर हर नाम अमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा हर का रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस कुमर पावहु मिल सत संग अमाहा राम। आओ सखी हर मेल मल्लाहा सुन हर कथा नाम लैलाहा। हर हर कृपा धार गुर मिलहु गुर मिलया हर अमाहा राम। कर कीरत जस अगम अथाहा खिन खिन राम नाम गुवाहा। मोको तार कृपा मिलिया गुर दाते हर नानक भगत अमाहा राम। जैत श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा मन राम नाम पीना लैलाहा। खिन खिन भगत करे दिन राती गुरमत भगत अमाहा राम। हर हर गुण गोविंद जपाहा मन तन जीत शब्द लैलाहा। गुरमत पंच दूत वास आवै मन तन हर अमाहा राम। नाम रतन हर नाम जपाहा हर गुण गाय सदा लैला। दीन दयाल कृपा करमा दो हर हर नाम अमाहा राम। जप जगदीश जपो मन माहा हर हर जगनाथ जगला। धन धन वड्डे ठाकुर प्रभ मेरा जप नानक भगत अमाहा राम। जैत श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा आपे निरपो ताड़ी लाह। आपे ही आप आप वरता आपे नाम अमाहा राम। आपे दीप लो दीपाहा आपे सत गुर समुंध मथाहा। आपे मथ मत कढ़ाई जप नाम रतन अमाहा राम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई हर हर नाम अमाहा राम। आपे वड़ दाना वड़ साहा गुरमुख पूंजी नाम वसाहा। हर हर दाद करो प्रभावा गुण नानक नाम अमाहा राम। जैत श्री महला चौथा। मेल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वे साहा। हर हर कृपा धार मधुसूदन मिल सत संग अमाहा राम। हर गुण बाणी सरवण सुनाहा कर कृपा सतगुरु मलाहा। गुण गावा गुण बोला बाणी हर गुण जप अमाहा राम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तुलाहा हर हर नाम न पुजे पजाहा। हर हर अतुल तोलत भारी गुरमत जप अमाहा राम। सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख मैल पाप तो आहा। दीन दयाल हो जने उपर देह नानक नाम अमाहा राम। जैत श्री महला पंजवां घर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाना कवन इहां जग मीत। जिस होए कृपाल सोई बदपूजा ताकि निर्मल रीत रहा। मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अरपाई। पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को ना सहाय। मुक्त माल कनक लाल हीरा मन रंजन की माया। हाँ हाँ करत बहानी अवद ता मह संतोख न पाय। हसत रथ असब पवन तेज तनी पूमन चतरांगा। संग न चालो इन मैं कसवा ऊठ सदायो नांगा। हर के संत प्रीतम प्रभ की ताक हर हर गाय। नानक इहा सुख आग्या मुख उजल संग संतन कै पाइय। जैत श्री महला पंजवा कर तीजा। दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहो संदेसरो कहियो प्रे कहियो। बिस पई मैं बहु बित सुनते कहो सहागण सही हो रहा।
ओ कहतो सब बाहर बाहर को कहतो सब महियो पर न दिशा चेहना लखिया सहागण सात बुझहियो सर्वनवासी काड़ काड़ वासी लेप नहीं अलपहियो नानक कहत सुनो रे दोगा संत रसन को बसहियो जैत श्री महला पंजवां तीरो सुन तीरो प्रभ को रहा जे प्राण मन तन सब हिरपो नीरो पेख प्रब को नीरो बेसमार बेअंत बड़ दाता मने गहीरो पेख प्रब को जो चाहो सोई सोई पाव हो आसा मनसा पूरो जवह जाप प्रब को गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कबहू चूर हो बुझ प्रब को जैत श्री महला पंजवा दौड़ींदड़ा साजन मेरा घर घर मंगल गावो नीके घड़ घड़ तसे बसेरा रहा सुख अराधन दुख अराधन बिसरै न कहू बेरा नाम जबत कोट सुख अजारा बिनसा परम अंधेरा थान थनंतर सबनी जाई जो दिशा सो तेरा